रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आ

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshi Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: गर्ल्स सुपर कप इंटर स्कूल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सोपोर इन कोलैबोरेशन विद सोपोर पुलिस एट खुशहाल स्टेडियम सोपोर फ्रॉम 31st of August 2026 onwards. Under the theme Women Empowerment, let's celebrate Nari Shakti. Participating schools: SRM Welkin, Sanctorum Public School, Gulzar Memorial Educational Trust, Valley Public School, Government Girls Higher Secondary Sopore, Apex Public School, MET Higher Secondary School Sopore, Rehmat-e-Alam Educational Trust Sopore. Tournament is supported by New Light Restaurant and Bakery Sopore, Snowdrop, Baramula.

Assalamu alaikum, adab, and a warm welcome to all of you. दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM और लो हाजिर है अर्शेज़ लेकर शो व्हाट्सएप।

0: सो हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप.
1: यू आर नॉट रेडी फॉर दिस
0: बट यू हैव टू रेडी टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स. जी हाँ, डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन. मजीद मालूमात के लिए प्लीज लॉग इन टू www.radiochunnar.com. मैं हूँ जॉक्स रेहट. मेरी जान धड़काते रहो.

0: इसलिए घातक हूँ।
1: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: Radio Chennai 90.4 FM show. What's up show, my brother? Aaj ka weather. जी हाँ, मौसम है कमाल. क्या होगा बवाल, बताएंगे आपको, सब पहुंचाएंगे आप तक. आज के वेदर में आपको बता दें, कल और परसों के मुकाबले 3 डिग्री कम. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस. कशीरी मंच दौन जो गर्म नेरा तप बड़ा तो टेम्परेचर हाई गसान तो लोग चित्रा इमाम करा. सो इट इज अबाउट एंड टुडे, क्योंकि आज दिन का मौसम है पातली क्लाउडी. वैसे धूप तो नहीं है, धूप बीच बीच में तो दिख ही जाएगी, सूरज और बादलों के बीच में घमासान तो चलेगा, लेकिन दोपहर होते होते गरज बरस की भी संभावना है.
2: वेदर अपडेट.
3: ख्याल जताऊं, डिहाइड्रेशन का सुन के त्रेशन अवेशन चेंग. अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स वीक पर है, ह्यूमिडिटी 72%, विंड स्पीड है 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 6:04 पर, आज का सनसेट होगा, जी हाँ, आज का सनसेट हो रहा है 7 बजे. अगर आपको भी यार बिना चैन नहीं मिलता, प्यार बिना चैन नहीं मिलता, तो हर दिल की धड़कन को जोरों से दरगाओ, अपनी बात हम तक पहुंचाओ. 88999 0049 0049 रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्स. आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. याद रखिए 8899 0409 0409 इज द नंबर. मस्तार शो व्हाट्सएप जॉक्स के साथ मेरी जान से डायरेक्ट दिल का दे रहा.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल रहता है हम पहुंचाते हैं आप तक। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं फोन्स की। जी हाँ, बताया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही अनाउंस किया जाएगा कि 18% लगने वाला GST अब 12% होगा स्मार्टफोन्स पर। बताया जाता है कि ये रिडक्शन जो है इट इज टू बूस्ट डायनामिक डोमेस्टिक स्मार्टफोन्स मार्केट और वही लोअर कंज्यूमर कॉस्ट और फर्दर जो है लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस इंडिया प्रमोट हो, इसके लिए ये जो कट ऑफ है किया जा रहा है। यहाँ अगर कट ऑफ हो गया तो आप कौन सा फोन खरीदेंगे हमें जरूर बताएं। 8899-04904 ये नंबर अपने फोन में दबाएं। अपनी बात अब हम तक पहुंचा सकते हैं अपने व्यूज, इमोशंस एंड थॉट्स। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मैं हूँ जॉक्स, सिटी हट दरकाते रहो।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: हाय, मैं हूँ आरजे सियू।
2: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट कहता है, मैं नशे में खुद से डरता हूँ, मैं नशे में और प्यार करता हूँ। मुझे नशे में दिखाई तू दे दी है, मुझे नशे में दिखाई तू दे दी है, मैं नशा तुझे देखने के लिए करता हूँ। रेडियो चुनार जागते रहो।
5: कोई इलाज नहीं, रोज कह दे।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दे
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल।

0: Calling out.
1: रेडियो चुनाव 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो वॉस अब मैं हूं आपका साथी आरजे
2: जस जस
1: और दिल की धड़कन रेडियो चुना रहा है और दोस्तों वक्त हो चला गया आज का टॉपिक आज का थीम आप तक पहुंचा दिया जाए ये है व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग की वेट ट्रेनिंग जिसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन जिन्हें आज हम दूर करेंगे ज्ञान शेयर भरपूर करेंगे और ऐप क्या हजूर करेंगे आप भी हमारे साथ जुड़े अपनी बात हम तक पहुंचाएं 8899904904 इज द नंबर जिम दे शौकीन जिम का क्या है सीन सब बताएंगे आपको आप तक पहुंचाएंगे और वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड फैक्ट्स आपके साथ करेंगे शेयर So my dear, आप भी अपने इमोशंस थॉट्स और जज्बात शेयर करें हमारे साथ मैं हूं जॉक्सी उससे धड़काते रहो

0: Zeus.
1: Kona. Yes.
2: दिल की धड़कन रेडियो चैनल धड़कन है आप, मैं हूं जॉक्स। जी हाँ, शो व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप शो में जैसा कि मैंने कहा, आज वेट ट्रेनिंग की बात हो रही है, और वही अगर हम बात करें अपने लिसनर्स की तो बखूबी साथ निभाते हैं हमारा, और यहाँ पर हमारे साथ सरदार जुड़े हैं। वेल इट्स अ लवली नेम सरदार, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग द रेडियो चैनल। कहते हैं सरदार सर, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ, एंड इट्स लवली जिस अंदाज से आपने शेर पढ़ा मुझे मज़ा आया। जॉन एलिया का फ़ैन हूँ और आज से आपका भी। देखिए हमारे फैंस नहीं, हमारी फैमिली है, और रेडियो चनार की फैमिली में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सरदार हमसे जुड़ने के लिए।
0: yes.
2: अब भी धड़का है, हर दिल की धड़कन को अपनी बात हम तक पहुँचाए, रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बने, किस्सा सब तक पहुँचाए। 8899-04-904 इज द नंबर। और जहां तक बात चली है वेट ट्रेनिंग की, देखिए बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हैं, रिलेट किए जाते हैं टू वेट ट्रेनिंग। अब जब भी हम जिम जाने की बात करते हैं तो कल को जिम सुबह सुबह ना सो दोस्त ने हमेशा बहुत सा बॉडी कसम से, बट ये है कि इट इज टोटली अ मिथ कि क्विक मैसिव स्ट्रक्चर आपका बिल्ड होगा या बॉडी बिल्डर स्टाइल मसल जो हैं वो बिल्ड होंगे। बल्कि अगर हम सही मायनों में देखें, इंटेंस ट्रेनिंग, हाई कैलोरी सरप्लस, स्पेसिफिक जेनेटिक फैक्टर्स और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करना, इट गिव्स यू द फिजिक यू वांट, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। ऐसा नहीं है कि इस गो कॉलेजियम तो पंद्रह दो बो दो गसन तो इंसान बस मसल, बट कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक्स, डिपेंडिंग ऑन द डाइट, डिपेंडिंग ऑन द कैलोरी डिफिसिट एंड कैलोरीज जो आप इनटेक करते हैं, आप कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कितना डिसिप्लिन के साथ आप वर्कआउट करते हैं, दैट इज द ओनली थिंग दैट डिसाइड्स योर मसल मास एंड रिकवरी एंड द स्ट्रक्चर बिल्ड ऑफ योर बॉडी। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर लाइम्स के बॉडी अलाई वोहन नफरन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि इट टोटली चेंज द परसेप्शन। हाँ, लोग आपको इज्जत की नज़र से इसलिए देखते हैं क्योंकि चाहे आपके पास अंधाधुंध पैसा हो, उसके बाद भी आप मनचाहा स्ट्रक्चर खरीद नहीं सकते, इसके लिए मेहनत मशक्कत है ज़रूरी। जी हाँ, गेट इनटू योर वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, गुड लक, रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर एवरी म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा। बातचीत जारी है आपकी और मेरी, तैयारी है 12 तक की पूरी तैयारी है, बस यू गॉट टू डू इज स्टे हुक्ड, धड़काते रहो।
3: मैनू पता सी तू मेरे उत्ते चीट कर दी, चैटा ताइयों सी तू

हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: to Zeus.
1: Kom on, Aya.
2: Zeus. Zeus.
3: लो जी, हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कनों पे एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। What's up? मैं हूं जॉक्सियस और यहां पर हो रही है आज बात वेट ट्रेनिंग की। वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड इतने मिथ्स इतने फैक्ट्स की अगर बात करने बैठे तो भैया वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन वक्त अभी बाकी है तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, जब भैया हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, अच्छा नंबर सुनना है, कैसे कनेक्ट हो वो बताना है, 999904904 नंबर। मैं हूं जॉक ज्यूस और आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप शो में जी हां आज बात हो रही है वेट ट्रेनिंग की।

तो भैया जब भी वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, जिम गस्ना सो चेंज सन छोट रोजा हाइट छन बड़ा अगर सुले जिम गसो मतलब ब्रोंठे जिम गसो यह गैसी हुआ गैसी अजैसी ये हिचनावा हुआ हिचनावा ऐसी मिथ्स तो कश्मीर में है। और कश्मीर में एक्सरसाइज के नाम पर अक्सर ये होता है हथे चुकवाने सुबह वाकस गसा आंटी अंकल छड़ी लेकर जितना खुद नहीं दौड़ते उतना कुत्तों को दौड़ाते हैं। सुबह सुबह कुत्तों का भी कार्डियो हो ही जाता है। नो कार्डियो से रिलेटेड मिथ, अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत ट्रेडमिल तमें पत गलिम ट्रिम करिए ना गए कन्फ्यूज मोन फिगर वित, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बल्कि ये होगा कि आप अपनी बॉडी पर खासा स्ट्रेस बढ़ाएंगे। अब इंसान के जोड़ कैसे काम करते हो वो तोड़ तो हम कभी और बताएंगे, लेकिन बताने वाली बात यह है कि जब आप रनिंग या साइकिलिंग वगैरह करते हैं, वॉक वगैरह पर जाते हैं, कार्डियो करते हैं, तो कार्डियो करने तक ही आपकी फैट जो है बर्न होती है, लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं

0: बोलना था
1: ना ओके
2: शर्मा ना छोड़ डाल राज दिल का खोल डाल आजू बाजू टेक आई लव यू बोल डाल शर्मा ना छोड़ डाल राज दिल का खोल डाल आजू बाजू मत टेक आई लव यू बोल डाल
0: ए भाई तेरे को कैसे मालूम था बड़ा कम पड़ जाएगा यार।
3: अरे सीधी बात है ना यार मोनू, हर गाने के फिनिश में हसीना मान जाती है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: to do's. Kom her, ja.
1: Bollywood News.
2: Dosturi geçenler ki Hades Frequency bir mehuncak siz enjoy kerne yapmaz tarşı WhatsApp WhatsApp show ka segment Bollywood News. Jee agar aap Tanushree Dutta ko yaad nahi kar pa rahe hain, naam sunte hi aapke dimag mein flashback nahi hua to Aashiq Banaya ki heroine. Aa gayi na yaad. अब आशिक बनाया, आशिक बनाया इतना मशहूर और मारूफ गाना कि सबने सुना, सबने है गुनगुनाया, और इसी गाने को लेकर तनुश्री दत्ता से पूछ लिया सवाल। कहा कि इमरान हाशमी जो कि जाने माने अदाकार है बॉलीवुड के, आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है? तो तनुश्री दत्ता ने कहा कि भैया इमरान हाशमी के बारे में क्या ही कहूँ, हमारा बॉन्ड जो है बहुत ही प्योर है, बहुत ही साधारण है, बिल्कुल भाई बहन की तरह। अब भाई बहन वाला बॉन्ड, जी हाँ, प्रोफेशन के परे अगर हम देखें तो तनुश्री दत्ता इसे इस तरह से जस्टिफाई करती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपना मिक्स इमोशन

प्रमोशन प्रमोशन के साथ हम तक पहुंचाए 8899-04904 ये मैजिकल बटन अपने फोन में दबाए। कॉल कर सकते हैं आप कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। फिलहाल के लिए बिहोल्ड द हाउल ऑफ हिमेश रेशमिया, वॉल्यूम बढ़ाइए, सबको सुनाइए हर दिल की धड़कन चौकसी उसके साथ शो वॉट्सअप खुल के धड़काइए।

करते हैं, अब वो भी AI enabled होगा। पहली ऐसी कंपनी जिसने ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस और ऑपरेशंस को पहुंचाया है नेक्स्ट लेवल पर। जी हाँ, मर जावा जावा, इट्स अ लवली ट्रैक और पक्का आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएगा। आप सुन रहे हैं मजेदार शो, मैं हूँ चॉक्सिस, मेरी जान से रेहत, धड़काते रहो।

0: हॉजेस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: जूस। कौन आया
1: दोस्तों? जिसका मुझे नहीं होता इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई है घड़ी, क्योंकि घड़ी कर रही है इशारा कि मेरे यारा करना पड़ेगा यहाँ से 9:02:11। लेकिन उससे पहले गाना प्यारा प्यारा जी हाँ स्टाइल में रहिए, गाना सुनिए, रेडियो चिनार बजाते रहिए, सबको सुनाते रहिए। और अपना क्या है, कल फिर से मुलाकात है ना, वगैरह आदमी है, झोला लेकर फिर से चले आएंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए एंड टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मसलामा।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: नोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: सच्ची बात समझ मत इसको बकवास क्या।
1: एक्सक्यूज मी क्या रे शो हंगामा यहाँ हुआ शुरू रे। एंड देखिए शो हंगामा शुरू हो चुका है जहाँ होता है ड्रामा एंटरटेनमेंट या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच ये सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है।
2: पैसे
1: की गारंटी बहुत सबन नहीं दे सकता बट एक गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट का डोज भरपूर और बैक टू बैक ट्रैक्स आधे आधे ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी।

ये तो प्रेम छे, प्रेम छे। देखिए प्रेम तो हमें आपके साथ है और इसी प्रेम में आगे बढ़ेंगे बराबर चार तक। शो हंगामा, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, अजी मियां बहुत कुछ है यहाँ। मैं हूँ अश्रा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूं कही और यू वापस आए।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अब देखिए, जैसे कि शो शुरू होते ही हम बात करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, बहुत कुछ चल रहा है हमारी ताजी ताजी सब्जी मंडी के अंदर। और आज की बात करें तो जो वेलकम टू द जंगल एक वेलकम जो एक सीरीज है, फ्रेंचाइज है, वहाँ एक उसकी मूवी है, इट्स द थर्ड मूवी ऑफ द फ्रेंचाइज। और उसकी बात करें तो अभी वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और एवरीबडी इज़ वॉचिंग। देखिए, बहुत सारे लोगों का यही रिव्यू था कि उतनी अच्छी मूवी नहीं है, बेफजूल के वैसे जो एक मल्टीवर्स वाले जो जोक्स हैं दूसरी मूवीज़ के जोक्स, जैसे जो भी परेश रावल सर हैं या जो बाकी क्रिएटर्स हैं, बाकी आर्टिस्ट और एक्टर्स हैं, उनकी इंडिविजुअल मूवीज़ में से जोक्स उठाकर एक ही मूवी में कंपाइल करके, और कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इनका बस इनका दौर ख़त्म हो चुका है, इन्हें फिर से कास्ट मत कीजिए, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये इंटरनेट का कहना था जब ये थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, बट अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हुई है। और लोगों का ये कहना है कि ब्रेन रॉट मूवी तो अच्छी है, देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत हंस लेंगे, बट इट इज नॉट द लेवल ऑफ द मूवी।

जो वेलकम कुछ साल पहले आई थी, अराउंड 10-15 साल पहले वो मूवी रिलीज हुई थी, जो ओजी वेलकम मूवी, वैसे ही वाइब फिर से कहीं और नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है ये गाना, जो कि एक्चुअली ओजी जो वेलकम मूवी का ही गाना है, अभी इसको रिमिक्स किया जा रहा है, जिसमें दिशा है और अक्षय कुमार है।

और लोगों का ये कहना है कि मस्त ट्रैक का मस्त गाना को एकदम खराब कर देते हैं, इन्हें पुराने गानों को छूना नहीं चाहिए बल्कि नए ट्रैक्स बनाएंगे। व्हाट इफ नए गाने लोगों को पसंद आए बट पुराने ट्रैक्स को मत छूए। अब इट्स अप टू यू, एक्चुअली इट्स अप टू ऑडियंस एंड कि क्या इंसान को पसंद आएगा। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नया बेटर है, चेंज इज इम्पॉर्टेंट, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि ओ जी जो ट्रैक है वो बदल नहीं सकता। अब आपका क्या कहना है, 8899904904 से नंबर जल्दी से हमारे साथ शेयर कीजिए और बन जाइए शो का हिस्सा। मैं हूं आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक जी, दी हॉट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा, जहां अभी हम रेलवे अपडेट के बारे में बात करेंगे। और आज की रेलवे अपडेट ये है कि जो भी लोकल सर्विसेज हैं वो एज पर द शेड्यूल है, बस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे, ताकि आप किसी भी ऑलमोस्ट कॉट द ट्रेन वाले मूवमेंट में ना फंसें। और उसके अलावा जो भी ट्रेन इन बिटवीन स्टेशन या लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, वो आपको रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से मिल सकती है। मैं वास्तव संतरे रेडियो सुना।

0: एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: करो हंगामा आज असरा के साथ
3: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
4: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, हर दिन का एक वादा तो है जो मैं हमेशा पूरा करती हूँ कि आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं, आपको अवेयर करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कि जब आप लोग अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं। फिलहाल के तो के लिए तो एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, बट कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि आज का स्पेसिफिक टॉपिक क्या है। मैं हूं अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।

0: Rhythm.
1: You have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM. जी जी हाँ हाँ के हंगामा है यहाँ. और देखिए हंगामा के साथ ड्रामा है, पर जैसे कि मैंने वादा किया था और जो वादा किया वो देखिए गाना तो इम्पोर्टेंट है, चाहे मैं गाऊँ या बैक टू बैक ट्रैक्स हो, बट इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है. और अभी की बात करें तो हम अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम जो हमेशा बात करते हैं कि जो भी नया प्लान है कि भाई आज तो नहीं हो पाएगा, भाई आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो थर्सडे है, आज तो फ्राइडे है, वेंसडे है, ट्यूजडे है, सैटरडे है, संडे है, बट अब तो मंडे से भाई तेरा शुरू करेगा जी, मंडे से भाई तेरा सब करेगा. बट बात यह है कि क्या हम सच में मंडे से फिर काम करना शुरू करते हैं, या सिर्फ ये मंडे मोटिवेशन हमारी रेल है या है ओवररेटेड? देखिए मंडे सुनने में ही ऐसा लगता है कि शायद संडे की छुट्टी खा कर ये मंडे बाहर आया है. और अभी की बात करें तो मंडे आज भी है, और मंडे की बात करें तो अब मंडे इज नॉट सो फन डे फॉर एवरीबॉडी माय बॉय. बट अब टॉपिक है, बात करना है, बात करने के पैसे हैं बस, और हम इस बारे में बात जरूर करेंगे कि मंडे एक्चुअली हमारे दिमाग में वो रीसेट वाला प्लान क्यों होता है कि जो भी अच्छा जिंदगी में करेंगे जिंदगी बदल लेंगे हम मंडे को. बट क्या सच में जिंदगी बदलती है या क्या होता है, और उसके बारे में बात होगी. और मेरे जैसे इंसान हो तो उन्हें तो यही लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा नींद आती है मंडे को, और धीरे धीरे जितना सैटरडे और संडे की ओर हम इंसान और हफ्ता बढ़ता है ना, आए हर जब मजा आता है ना, क्या ही बताएं. देखिए मंडे इज नॉट सो फन डे जैसे कि मैंने पहले कहा, बट बात यह है कि हमारे पैटर्न्स हमें हमेशा किसी ऑड नहीं बल्कि इवन नंबर्स पे क्यों ले आता है. हमारा ब्रेन हमेशा क्यों कहता है कि अभी, अगर फॉर एग्जांपल अभी की बात करूँ तो स्टूडियो क्लॉक पे 2:47 बज रहे हैं, ठीक है. तो बट मैं अब ये सोचूं कि भाई मुझे कुछ नया करना है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे शो करना है, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है या कुछ ऐसा करना है, कि बराबर 3 बजे से शुरू करूँगा. अब अगर 3:01 हो गया, 3:02 हो गया, तो 3:30 से शुरू करूंगा अब. या ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारा ब्रेन ऐसा प्रोसेस क्यों करता है कि कोई भी नहीं नया काम होगा, मंडे का बॉय मंडे से शुरू करते हैं. तो देखते हैं अब क्या होता है इस बारे में, और क्या फैक्ट्स हैं, क्या डिसिप्लिन जरूरी है. मैं हूं असरा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं कह रही हूं, वापस आई सच्ची.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: morning.
1: जी हाँ, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 8899904904 is the number you can call, message, text, WhatsApp और अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए. और जैसे कि आज का टॉपिक है that Monday motivation is real or overrated. अभी आधे से ज्यादा दिन खत्म हो चुका है और आज मंडे था, तो आप बताइए कि आपकी मोटिवेशन अजी मियां कैसी थी. Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sinar 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

देखिए साथ तो मैं आपका बराबर चार तक निभाऊंगी, बट अभी की बात करें तो अभी शुरू हो चुका है सेगमेंट गेम ऑन, जहां मिलेगा आपको लोकल नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट। ओ गुरु क्या चल रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड

स्पोर्ट्स की दुनिया में हमें एकदम बुरा करके बताएंगे आपको और एकदम इन्फॉर्म्ड रखेंगे। रेडियो 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.
2: Welcome back to Show Hangama and segment Game On. अब देखिए गेम ऑन है तो कुछ ना कुछ खास तो हुआ होगा ऐसा कि जिसको लेके मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्या कहूँ कि आप तक खबर पहुँचानी है, मुझे बताना है आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट जो कहीं और नहीं मिलते। अब देखिए आज का कोई फैक्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमारे एक इंडियन एथलीट ने बनाया है। ही इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड और अभी जो दुलीप ट्रॉफी से रिलेटेड मैच चल रहा है, जो अभी लीग चल रहा है, दिस इज ऑर्गेनाइज बाई BCCI एंड पिछले 57 सालों में कोई भी ऐसा 15 साल का बच्चा नहीं है जिन्होंने वह हाफ सेंचुरी की हो, यानी कि ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट हाफ सेंचुरियन इन द दुलीप ट्रॉफी हिस्ट्री और उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। This is honestly something to be very proud of और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत बार आजकल आगे आ रहा है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट और उन्होंने IPL में भी खेला, काफ़ी अच्छा खेला और अभी की बात करें तो ही इज़ डूइंग रियली रियली ग्रेट इन ऑल ऑफ द जो फ्रेंचाइज हो रही हैं या जो भी टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं, बहुत ही सही, बहुत ही कमाल। एंड दिस इज़ द फैक्टर, दिस इज़ द टाइम जब हमें अपने जो आसपास के लोग हैं

एथलीट हैं, चाहे वो लोकल एथलीट्स हैं, नेशनल एथलीट्स हैं, कोई भी एथलीट आपको मिले तो दे आर वर्किंग रियली हार्ड कि वो अपने जो कम्युनिटी को, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे. सो दिस इज़ द हाई टाइम कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा एथलीट है जो बहुत अच्छा कर रहा है, जस्ट अप्रिशिएट देम, जस्ट से लाइक दिस टू देम दैट यू आर डूइंग रियली ग्रेट, यू आर डूइंग रियली नाइस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करें. और कहीं ना कहीं ये जो एप्रिसिएशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं होती, बल्कि एक जोश का विफ होता है, उन्हें एक होप का विफ मिलता है, विफ ऑफ होप, विफ ऑफ पावर दे गेट समवेयर. क्योंकि देखिए, आर्टिस्ट हो, एथलीट हो, कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन से हमारा जो वो एक मोरल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. आर्या पार तो वैभव ने कर ही दिया. वैभव सूर्यवंशी, द यंगेस्ट पर्सन, द यंगेस्ट एथलीट हु हैज अचीव द गोल ऑफ बीइंग द हाफ सेंचुरियन. ओ माय गॉड, दैट्स समथिंग रियली नाइस. मैं हूँ असरा सुत्रे, रेडियो सुनार. कुछ ही वक्त बचा है, थोड़ा ही वक्त है, बट इस वक्त को सही से इस्तेमाल करेंगे. इजी लेते हुए 4 बज गए और बजने वाले हैं एक्चुअली. तो तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. और कुछ ही ट्रैक के बाद आपसे और मुलाकात होगी, और वो आखिरी मुलाकात होगी आज की. सो जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का ऐसा. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

आगे अभी मेरे जाने का समय आ चुका है और जाते जाते वन ऑफ माय फेवरेट, आई वोंट से इवन वन ऑफ माय फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलेस. ओह माय गॉड, शी इज सो गॉर्जियस, शी इज सो टैलेंटेड, शी इज द इट गर्ल, द इटेस्ट इट गर्ल आई हैव एवर सीन. And the vibe, the energy she carries in the videos and in real life also, that is something that actually inspires me. So, abhi closing the show on something that I really like, that is Jasmine Sandler's ke gaane. Aur, oh my God, you also enjoy it. Main bas ja rahi hoon, apna khayal rakhiye aur jaate jaate bas itna hi kehna chahti hoon ki apna khayal rakhiye aur apne liye kuch kariye aur apni life mein kuch na kuch crazy karte rahiye, kyunki it's very important.

और देखिए जाते जाते अब एक चीज तो बनता है कि इन्हीं का जैस्मिन सैंडल्स का एक बहुत ही ऐसा ट्रैक जो एक्चुअली नॉस्टैल्जिया फील कराता है, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैक जो मैंने जैस्मिन सैंडल्स के गाने जब सुनते थे, तो दिस वाज द फर्स्ट आई विश आई गेस दिस वाज द फर्स्ट ट्रैक दैट आई हैव लिसन टू. सो जाते जाते बस ये ट्रैक था कि कुछ क्रेजी हो जाए. मैं हूँ आसरा सुन रही है रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Dinner.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत

बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार

0: क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: 자기 주문 내리던가 내버려잡이
1: Sir, on stage, 5 minutes.
0: Okay. 또 말이? 맞아. 내 뜻은 뭐래?

0: वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
1: सुनिए रेडियो गर्ल अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM

0: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है,

और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Jeremy. Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: तभी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम।
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ, ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, तारा रा रा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

से मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।